नहीं जावा हाथी जा जावा श्री बदले मिंदर के बहरा दिन में बरबे श्री बदले।